0: बात है, बड़ा शानदार बंदा ना। ते इमेजिन करके जो तो बंदा गाना सुन रहा, एक आंख मारू दो मारू दोनों कट्ठिया किदा मारा, ते पर बड़ा ही सुपर डुपर हिट गीत अपने टाइम दे विच, अज भी सुन के बड़ा बंदा आनंद लैंदा है, हासा जरूर आंदा है। ते प्रोग्राम सर्व रेडियो ते साडे नाल एक बारी फिर जुड़ चुके ने उमरप्रीत चावला जी। उमरप्रीत जी वेलकम बैक।
1: थैंक यू सो मच सरब जी। जी सो लाइफ इंश्योरेंस की अपना गल की है, जिम्मे मैं अगे भी किया भी जिन्ने अपनी यंग एज है उन्ना अपन वधिया प्रीमियम मिल जाता, हेल्थ करके रैकेट करके सारा कुछ ठीक हुंदा। सो यही रीजन हुंदा जो आप बच्चों की इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि बच्चों की इंश्योरेंस ऑफकोर्स आप नहीं सोचते होंगे कि आप इंश्योरेंस को देखना, आप कैश वैल्यू को देखते हैं, आप बच्चों की अगों वैल्थ जनरेट करनी होंगी है। बट इंश्योरेंस वह एक कंपोनेंट है, वह वधिया रहिंदा हुंदा, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बच्चा या बहुत छोटा बच्चा तो वो कॉस्ट बहुत थोड़ी होंगी है इंश्योरेंस की। हेल्थ वो लॉक हुई हुई है, तुम पेड अप प्लान कर लिया, कल नो ये भी इंश्योरेंस के अमाउंट ने भी वधी जाना, मे भी आप 50,000 या लख नाल शुरू किया, लेकिन जो उन्हें अपने घर लेने या जो उन्हें अपना बिजनेस करना या जो वो फैमिली बननी है उदों तक परमानेंट इंश्योरेंस वध के हाफ मिलियन मिलियन की हो जाएगी, जिसे एक चंगी खासा अमाउंट होंदा कैश वैल्यू का, जरा बच्चे के फ्यूचर लिए यूज कर सकते हैं। आप कल बिजनेस खोल के देना, घर की डाउन पेमेंट करनी है, वह सारिया चीजा उस प्लान की कैश वैल्यू में यूज करके कर सकते हो, तो उन्हें वधी जाना कैश वैल्यू ने भी, जरा फेस अमाउंट है डैथ बेनीफिट है उन्हें भी वधी जाना। सो तुम कोई बच्चा लिए प्लान देख रहे हो, तुम अपने लिए देख रहे हो, या थोड़ा कोई भी क्वेश्चन है कि थोड़ा कोई मैडिकल इशू आ चुका, या कई बार आप कोई नॉन मैडिकल रीजन होंगे, बैंकरप्सी है, कोई चार्जिज है, ड्रिंक एंड ड्राइव के चार्जिज है, क्रिमिनल चार्जिज है, सानू लगता सानू इंश्योरेंस मिलनी नहीं, या कई बार आप हैजिटेट करते होंगे। सो कॉन्फिडेंशियल वे दे विच आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज नू, मैं चेक करके जिहड़ियां भी कंपनियां जिहड़ियां हाई रिस्क कंपनीज होंदियां उह इन्हां सारियां चीजां नू कवर करदियां। सो आप देख सकते होंगे, मैं हमेशा कहंदी हां भी जे कोई हैल्थ इशू आ भी चुका या कोई नॉन मैडिकल प्रॉब्लम हो भी चुकी, तां भी उस टाइम ते अपनी चीज नू सिक्योर कर लो, क्योंकि कई बार सानू इह लगदा हुंदा भी अज मैनू हैल्थ इशू आ गया, चलो कोई गल नहीं हुण तां आ ही चुका, हम दो साल रुक के ले लांगे, दो साल तक आपां नूं नहीं पता भी वह हैल्थ इशू का की होना, जे वध गया तो होर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जे वो ठीक हो गया तो आप री अंडरराइट करा के वापिस रेगुलर इंश्योरेंस दे विच जा सकते हैं। सो सारिया ऑप्शन ओपन होंदिया, बीइंग इंडिपेंडेंट ब्रोकर मैं सारिया मेजर इंश्योरेंस कंपनीज नाल डील करदी हां, सो तुहानू कितें भी शॉप अराउंड करन दी लोड़ नहीं, चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस है, डिसबिलिटी, कोई तुसीं सुपर वीजा विजिटर ट्रैवल इंश्योरेंस की कोटेशन चाहिए, या थोड़ा कोई भी क्वेश्चन है कोई इनवैस लैके आर आर एस पी पहला कर लेना, एफ एच एस ए आर आर एस पी बच्चों का एजुकेशन सेविंग प्लान है, या आर डी एस पी रजिस्टर्ड डिसबिलिटी सेविंग प्लान, जिसे जे घर थोड़े कोई बच्चा भी स्पेशल नीड्स या कोई अडल्ट है डिसबिलिटी से, एज थोड़ी 50 साल तो घट है, तो तुम भी 90,000 तक की गवर्नमेंट ग्रांट लिए एलिजिबल हो सकते हो। सो इस प्लान के रिलेटिड तुम कोई इन्फॉर्मेशन लैनी है, थोड़ा कोई पता है फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी कोई बच्चा भी स्पेशल नीड, तुम वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। नंबर है जी मेरा 6474461616। कनेडा दिया ऑलमोस्ट सारिया प्रोविंसेस मैं लाइसेंसड हाँ, थोड़ी फैमिली फ्रेंड्स है तुम उन्होंने नंबर शेयर कर सकते हो। वैबसाइट है जी मेरी uchavla.com, तो नंबर अगेन 6474646 1646 6
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: थैंक यू जी।
0: आओ जी आजो भाई जी। हेलो।
2: हां जी सरबजीत जी
0: जी,
2: अपना जदों कि चोर मोरी करके कंध दे विच नहीं वेखना होवे उदों भी एक अख बंद करनी पैंदी आ,
0: बहुत जरूरी है। बंदा फिर नजर मारदा सारे पासे, ओही गल है डोर दे उत्ते भी अजकल लग्या हुंदा भी देखदा बंदा डोर चो अख बंद करके भी बाहर कौन आया,
2: ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਭੈਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ
2: ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
0: ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
2: ਨਹੀਂ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। क्या बात है, प्रोग्राम सर्व रेडियो 905-673-3337-9057-33337। ते नाल दी नाल किसे नूं भी मॉर्गेज दी भाल है ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਨ ਈ ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਦੇ ਮਯੰਕ ਪਟਨਾਗਰ ਜੀ। ਫਸਟ ਮੋਰਗੇਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 647-702-2023 647-702-2023 ਮਯੰਕ ਪਟਨਾਗਰ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਪਲਾਜ਼ੋ, ਪਜਾਮੀ, ਲੌਂਗ ਡਰੈਸਿਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੇਅਰ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਹੈਂਡਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। SUKH.designer.boutique ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647-203-3365 ਤੇ 647-203-3365 647-203-3365 ਸੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੁਟੀਕ।

जिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-3333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि। भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन

0: मिलती है, तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
1: संत सभाए चतुर्दश पाए ब्रह्मा बुतरा पाए शिव चूर्ण पाए हर दिशा।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 हर पाउंड। तो आते इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1115 416-213-1165।

सर्वदा ब्रह्मानां मोचयेत् पश्चात् चतुर्द्वादशोऽथवा अनेन विधिना यास्तु कृत्वा व्रतमनुत्तमम् व्रतं सदा

0: यस्मै कस्मै नदारभ्यं भवत्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थाः पृथिव्याः स प्रदक्षिणे यत् फलं लभते लोकस्तदेतत् धारणे मुने पञ्चलक्षजपि नैव चित्तमे तत्पदे ध्रुवं लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सङ्कटे न तस्य मृत्युर्भवति जरे वल्लोपिसीश्वरे जीवन्मुक्तो भवे सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरेश्वरि यदि स्यासिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवे ध्रुवम् इति श्रीब्रह्मवैवर्ति प्रकृतिखण्डान्तर्गत दुर्गा कवचं सम्पूर्णम्।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार की बहुत प्यारा स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी श्रोताओं का वीकेंड उम्मीद रखती हूँ कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अब आपके लिए अक्टूबर 2 का दिन भी बड़ा महत्व रखता है, गांधी जयंती मनाई जाती है और आपने भी कहीं ना कहीं जरूर उनको याद किया होगा। तो हमारे नेशनल राष्ट्रपिता हैं तो जरूर उनको याद किया जाता है। तो उनको और अब आपके लिए अगर आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का टीवी चाहिए, बैक यार्ड में बढ़िया आपको गैजेट चाहिए, बैक यार्ड में आपको बढ़िया फर्नीचर चाहिए, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो ये सारा सामान फेस्टिव सीजन के लिए गिफ्ट देने के लिए आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनके बारे में जानकारी ले लो स्पेशल्स के बारे में, तो फिर अपना घर से जा लो फेस्टिव सीजन के लिए। तो उनको कॉल कर लो, ऑर्डर बुक कर लो 905-7900-45-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। हिमालय वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके $100,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3340, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3340, ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ आपके लिए बड़ी सुंदर सी मूवी आई थी ओल्ड इज गोल्ड कलेक्शन में से, ससुराल। तो सभी लोग जरा इंडिया जहाँ भी जाते हैं ससुराल तो सभी जगह होता है, सभी जहाँ भी दुनिया में रहते हैं सभी कल्चर्स में होता है ससुराल जाना। तो आपको ससुराल फिल्म का मैं बहुत ही प्यारा सुना, पहले बालों की अगर आपने वो तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मदद करते हैं। तो ये जो है जो एचके मूवर्स आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-8004-416-524-6704। तो आइए सुनिए गाना।

आखिरी का स्वागत है घर संसार में। तो हालांकि ये जो फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट का जो था उस वक्त, तो लेकिन आप देख सकते हो सीनरी में कि कोरियोग्राफी कितनी बढ़िया की गई है, कमाल की कोरियोग्राफी की गई है इसमें। तो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, बहुत सुंदर फिल्म है, पुराने सभी एक्टर्स हैं इसमें, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो अब और भी गाने आपको सुनाएंगे, तो पहले आपके लिए सुनाएंगे बहुत ही प्यारा सा गीत। पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज जो सेट बढ़िया लेके आना है फेस्टिव सीजन के लिए, नया टीवी लेके आना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल लगी हुई है। तो ये है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स। उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो गोल्फ वालों के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है, आप उनकी स्पेशल्स देखिए topchoiceelectronics.com। छोटी सी किचनेट आपको सेट करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए। उनका नंबर है 905-799-0045। अपने ऑर्डर पहले से बुक कर लीजिए फेस्टिव सीजन के लिए। तो अब उनकी स्पेशल्स देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए। अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो तो आपके लिए बड़ी ही खुशी वाली खबर है कि आपके लिए मास्टर खुलते हैं, आपने कुल्फी कुलजन का काम करवाना हो तो आप वहां पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। जी हाँ, उनको topmasterkuljandepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और उनके बारे में आप ले सकते हो। तो अब किस किस्म की भी आपको मूविंग करनी तो आपके लिए एच मूवर्स घर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, गाड़ियां भी मूव करने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 400-524-4164-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। मूविंग कोई आसान काम नहीं होता, पर एच के मूवर्स आपके लिए हर तरह की आसानी कर देते हैं मूविंग में। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो, सराहते हो, मैसेज भेजते हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रोग्राम 25 साल से ऐसे ही चल रहा है, तो आप सभी की वजह से और स्पॉन्सर्स की वजह से ही हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। तो अब अगर आपके लिए इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने जा रहे हैं, तो थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के इलाके में साद महमूद आगे आए हैं। वो बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को मदद करते आ रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो काउंसलर की रेस में है। तो आप अपना आपका हक है तो जरूर, हम ये नहीं कहते किसी को भी आप वोट दो, किसी को भी आप वोट दे सकते हो, लेकिन आपका हक है तो इसको जरूर आप, ये जो इलेक्शन है इसमें काफी चीज आपको चुननी होगी, मेयर चुनना होगा, आपको काउंसलर चुनने होंगे, स्कूल ट्रस्टी चुनने होंगे, तो ये सारी जानकारियां भी डिबेट होंगे, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए अपने अपने इलाके में। हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन सिर्फ 5,000 तों लैके 1,000-1,00,000 डालर तक। फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवे टायर दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, चार टायर का सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हमिल्टन
कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो मिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत। और जब आजकल मौसम बहुत अच्छा है,

0: बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये फिल्म आई थी 1963 में सेहरा, तो उसमें संध्या एक एक्ट्रेस थी, उसी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, लता जी का गाया हुआ गीत। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए, अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना लेना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे जाइए। करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ चाहिए, क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1730, 9058141730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमने जो गाने चुने हैं, तो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी किस्म का भी पूजा का सामान लेना है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो आप भी तैयारी कर रहे हो पूजा के लिए। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और पितर पक्ष के लिए भी पूजा के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट पे आपको सब मिलता है, तो वहाँ आप जाइए और वहाँ से आप ले सकते हो।
1: आपको अपने आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल, जिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-5730 पर कॉल कीजिए, 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि आपने अगर लंदन में के आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने क्लीजन का काम करवाना है, तो आप masterclusiondepot.com पर जाइए, उनके बारे में जानकारी लेकर के तो आप वहाँ पे आपको पूरी आपकी कार वेंट आपको एकदम नए जैसा बना रहते हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत, फिल्म थी आसपास, हेमा मालिनी।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, गाने पसंद आएंगे। तो एक फिल्म बड़ी बढ़िया आई थी, विदेश की फिल्म, तो हेमा मालिनी थी उसमें, लता जी का गाया हुआ यह गीत है। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, क्योंकि अगले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड है आप सभी का, तो थैंक्स गिविंग का। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सुहागा भला, हैव ए वंडरफुल डे, वंडरफुल वीक, एंजॉय सॉन्ग, राजेश खन्ना और आशा पारेख।

मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450 पर कॉल कीजिए।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि। भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 हर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1115 216-213-1165।

ब्रह्मादान् भोजयेत् पश्चात् चतुर्द्वादशोऽथवा अनेन विधिना यास्तु कृत्वा व्रतमनुत्तमम् व्रतम् सदैव कुर्वीत सप्त

क्रिया ब्रह्मणि पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं धर्माय जानवी तदि धर्मेण दत्तं मह्यं च कृपया पुष्करी पुरा त्रिपुरारिश्चय कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा मनोज ब्रह्मा यत्रित्वा मधुकैटभयोर्भया।

चंडिका दक्षिणे पत्रकाली च नेरिद्यां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुभ्यां सर्वमंगला उत्तरे वैष्णवी पातु ईशान्यां शिवप्रिया जलस्थले चातरिक्षी पातु मां जगदम्बिका।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत प्यारा स्वागत है। सभी को नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का वीकेंड उम्मीद रखती हूँ कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अब आपके लिए अक्टूबर 2 का दिन भी बड़ा महत्व रखता है, गांधी जयंती मनाई जाती है और आपने भी कहीं ना कहीं जरूर उनको याद किया होगा। तो हमारे नेशनल राष्ट्रपिता हैं तो जरूर उनको याद किया जाता है। तो उनको और अब आपके लिए, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का टीवी चाहिए, बैक यार्ड में बढ़िया बढ़िया आपको गैजेट चाहिए, बैक यार्ड में आपको बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो ये सारा सामान फेस्टिव सीजन के लिए गिफ्ट देने के लिए आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनके बारे में जानकारी ले लो, स्पेशल्स के बारे में, तो फिर अपना घर से जा लो फेस्टिव सीजन के लिए। तो उनको कॉल कर लो, ऑर्डर बुक कर लो 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। हिमालतर वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो BBT रॉकलिफ आटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3340, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3340, BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ आपके लिए बड़ी सुंदर सी मूवी आई थी ओल्ड इज गोल्ड कलेक्शन में से, ससुराल। तो सभी लोग इंडिया जहाँ भी जाते हैं, ससुराल तो सभी जगह होता है, सभी जहाँ भी दुनिया में रहते हैं सभी कल्चर्स में होता है ससुराल जाना। तो आपको ससुराल फिल्म का मैं बहुत ही प्यारा सुना, तो पहले बालों की अगर आपने मूव तो HK मूवर्स आपको कैनेडा भर में मदद करते हैं। तो ये जो है जो HK मूवर्स आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-8004-416-524-6704। तो आइए सुनिए गाना।

होती है, फिर का स्वागत है घर संसार में। तो हालांकि ये जो फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट का जो था उस वक्त, तो लेकिन आप देख सकते हो सीनरी में कि कोरियोग्राफी कितनी बढ़िया की गई है, कमाल की कोरियोग्राफी की गई है इसमें। तो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, बहुत सुंदर फिल्म है, पुराने सभी एक्टर्स हैं इसमें, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो अब और भी गाने आपको सुनाएंगे, तो पहले आपके लिए सुनाएंगे बहुत ही प्यारा सा गीत। पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज जो सेट बढ़िया लेके आना है फेस्टिव सीजन के लिए, नया टीवी लेके आना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल लगी हुई है। तो ये है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स। उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है। तो ग्वाल्फ वालों के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है, आप उनकी स्पेशल्स देखिए topchoiceelectronics.com। छोटी सी किचनेट आपको सेट करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए। उनका नंबर है 905-799-0045। अपने ऑर्डर पहले से बुक कर लीजिए फेस्टिव सीजन के लिए। तो अब उनकी स्पेशल्स देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए। अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो तो आपके लिए बड़ी ही खुशी वाली खबर है कि आपके लिए मास्टर खुल के हैं। आपने कुलजन का काम करवाना हो तो आप वहां पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। जी हाँ, उनको topmasterkulijandepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और उनके बारे में आप ले सकते हो। तो अब किस किस्म की भी आपको मूविंग करनी तो आपके लिए एच मूवर्स घर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, गाड़ियां भी मूव करने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 400-524-4164-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। मूविंग कोई आसान काम नहीं होता, पर एच के मूवर्स आपके लिए हर तरह की आसानी कर देते हैं मूविंग में। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो, सराहते हो, मैसेज भेजते हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रोग्राम 35 साल से ऐसे ही चल रहा है, तो आप सभी की वजह से और स्पॉन्सर्स की वजह से ही हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। तो अब अगर आपके लिए इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने जा रहे हैं, तो थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के इलाके में साद महमूद आगे आए हैं। वो बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को मदद करते आ रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी में, और तो काउंसलर की रेस में है। तो आप अपना आपका हक है तो जरूर, हम ये नहीं कहते किसी को भी आप वोट दो, किसी को भी आप वोट दे सकते हो, लेकिन आपका हक है तो इसको जरूर आप, ये जो इलेक्शन है इसमें काफी चीज आपको चुननी होगी, मेयर चुनना होगा, आपको काउंसलर चुनने होंगे, स्कूल ट्रस्टी चुनने होंगे, तो ये सारी जानकारियां भी डिबेट होंगे, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए अपने अपने इलाके में। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन सिर्फ 5,000 तों लैके 1,000-1,00,000 डालर तक। ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 5.49% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਜੀ ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਜੀ ਰੌਕ ਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ।
कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत। और जब आजकल मौसम बहुत अच्छा है,

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये फिल्म आई थी 1963 में सेहरा, तो उसमें संध्या एक एक्ट्रेस थी, उसी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, लता जी का गाया हुआ गीत। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए, अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना लेना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे जाइए। करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ चाहिए, क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमने जो गाने चुने हैं, तो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी किस्म का भी पूजा का सामान लेना है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे पूजा के लिए। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और पितृपक्ष के लिए भी पूजा के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट पे आपको सब मिलता है, तो वहाँ आप जाइए और वहाँ से आप ले सकते हो।
1: गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5730 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि आपने अगर लंदन में के आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने क्लीजन का काम करवाना है, तो आप masterclusiondepot.com पर जाइए, उनके बारे में जानकारी लेकर के तो आप वहाँ पे आपको पूरी आपकी कार वेंट आपको एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत, फिल्म थी आसपास, हेमा मालिनी।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, गाने पसंद आएंगे। तो एक फिल्म बड़ी बढ़िया आई थी, विदेश में थी फिल्म, तो हेमा मालिनी थे उसमें, लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, क्योंकि अगले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड है आप सभी का, तो थैंक्सगिविंग का। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सुहागा भला, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल वीक, एंजॉय द सॉन्ग। रजेश खन्ना और आशा पारेख।

आठ पहर हर का जस रवना दिखठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरा करता संत साध भय साथी कारगहलीने सर्वस दीने आप है आप मिलाया।

0: कर गहलीन सर्व सदीन आप है आप मिलाया। कहो नानक सर्व थोक पूरन पूरा सतगुर पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रमाणा गोबिंद कृपा धारी प्रभ राखी पैज हमारी।
1: स्वागत जी प्रोग्राम पंजाबी लहरां दे नाल। तुसी इस वेले बने हुए हो तो जो शुरुआत असी कर रहे हैं तो एतवार दा दिन है। सो परमात्मा करे थोड़ा दिन जो है सफल रहे ते जिथे जो अज सोचिया धारिया है ते उस ते जो एक हाँ दा चिन्ह जो है परमात्मा वालों जरूर लग जावे जी। बहुत बहुत अज दे दिन लई खास थानू सारिया नू बेस्ट विशेस। अक्टूबर दा महीना जो शुरू होया ते हले भी लगता है कि चलो थोड़ी बहुती पॉसिबिलिटी हले इस हफ्ते तो अच्छे टेंपरेचर दी ही है। सो अज जी वध तो वध अज 21 डिग्री बिल्कुल जाणगे। इस वेले 10 डिग्री ने ते सवेर वेले मीह वरण दी थोड़ी बहुती पॉसिबिलिटी जो है वह जापदी है। ते दिन भर अज मौसम जो है वह धुप ते बदलां दा जो इन्हों का आपस के कॉम्पीटिशन आ चलना तो ये चलता रहना। पर 21 डिग्री तक अज तापमान जरूर पहुँचे। सो कल थोड़ी हेर फेर जो है मौसम दे विच जरूर होएगी जिथे अज 21 तो फिर कल 15 डिग्री ही रह जाएंगे। पर जो बाकी हफ्ता जो शुरू हो रहा है तो उदों चलो टेंपरेचर जो ने 20 डिग्री के लागे छागे ही होने की उम्मीद है। सो उम्मीद करते हैं कि आने वाला हफ्ता चलो मौसम पक्षों जो है बहुत ही चंगा रहेगा। सो 7:20 जी सूरज ने चढ़ना तो अज की जो शाम है 6:54 सनसैट के नाल संपूर्ण होगी। सो एतवार का प्यारा दिन जिथे चलो रिलैक्स तो असी हुण नहीं आ उत्थे हौली हौली फिर शाम तक जो सोमवार दे दिन दियां सोचां जो ने ओह फिर घेरा पाउंदियां ने। पर पूरा दिन हले जो पिया जी तुसी रज के हंडाओ प्रोग्राम पंजाबी लहरां दे नाल तुसी बिल्कुल बने रहो ते 6-8 दा समां जो है साडा तुहाडा समां बिल्कुल रहेगा जी। ते नाल ही मैं तुहानू दस दवां तुसी फोन राही प्रोग्राम सुन सकते हो जी। नंबर 416-477-2040 4164-77-2040 ते US दे विच जी नंबर 4-641-741-0860 तुसी जरूर जी नोट कर लो। ते नाल ही नोट थानू बिल्कुल यह भी करवाईदा कि पंजाबी लहरां दी

अच्छी मॉर्गेज एडवाइस साडे नाल होवे अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर तों, ते फिर इस दे विच मदद जो है जो 100% सानू मिल जाती है ते काम जो है वह आसानी दे नाल हो जाता है। सो हरमन बत्ता जी का असी तुहानू नंबर देवांगे, तुसी नंबर 647-9000-6476859000 ते हरमन बत्ता जी नूं संपर्क जरूर कर सकते हो। ते घर अपना लैना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अच्छी लैनी है, मॉर्गेज रिन्यूअल आ गई है, तां वी इन्हां नूं संपर्क करो। नंबर 647-6859000 जी हरमन बत्ता जी दे लई इह नंबर है। ते नाल ही जो साडे जी ट्रक ड्राइवर वीर ने जो सानू इस वेले सुन रहे ने, तुसी ओनर ऑपरेटर हो, फ्लीट ओनर हो, तो खास तौर पर संदेश थोड़े लिए है क्योंकि एबल इंश्योरेंस तो मैंडी गिल जी थोड़ी मदद कर सकते हैं जी अच्छे फ्लैक्सीबल ट्रकिंग इंश्योरेंस के ऑप्शनस के विच। तो सिर्फ यही नहीं, काम जो मैंडी गिल जी का कार इंश्योरेंस का भी है, होम इंश्योरेंस के बिजनेस इंश्योरेंस का भी है। तुसी संपर्क करो नंबर 647-9000-6479509 ते 6479299509 ते कॉल हो सकती है, या फिर नंबर थानू असी एक होर देइए 647-883-1899 जी मैंडी गिल जी दे लई। तुसी यह नंबर जरूर नोट कर लो जी। इंश्योरेंस दा सानू हमेशा जो रहिंदा है कि चलो एक अच्छी इंश्योरेंस सानू मिल सके, सो थोड़ी मदद इस दे विच मैंडी गिल जी जरूर कर सकते ने जी। सो जी जिथे असी सोचते हाँ कि अजकल ठगी जो है वह हर पासे वध गई है ते इस तो असी बचा रखिए, पर फिर भी कुछ ना कुछ अजिहियां खबरां जो ने वह साडे सामने आ ही जांदियां ने, जिथे कई बारी असी सोचते भी नहीं, असी किसी क्यू आर कोड ते असी क्लिक कर दिता, असी कोई मैसेज जो है उसनू जो है जवाब दे दिता, उसका रिस्पोंस जो है वह दे दिता, ते सानू पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ा जो ने इना दे नाल कोई साड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वह ले रहा है। ते अजकल जो एक स्कैम जो है एक वड्डा जो हुण सामने आ रहा है, हालांकि ये तो चलो मैं सोचती हाँ लंबे समय तो भी अजिहियां चीज़ा जो ने हो रही ने, पर हुण जदों असी इन्ने जागरूक हो गए हाँ उदों भी असी ये जो गलतियां जो है वह ना करिए। तो लोग अजकल की करते हैं थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लैके बैंक की पूरी जानकारी चलो इन्हां कोल होई ते फिर उस इन्फॉर्मेशन नू लैके ये क्रैडिट कार्ड भी थोड़े नाते जो है वह ले रहे ने। सो क्रैडिट कार्ड का फ्रॉड जो है ये भी इन्हीं दिनी काफ़ी वध्या क्योंकि ये सिर्फ गल्ला ही नहीं, सिर्फ अजिहा सिर्फ कहा ही नहीं जा रहा केसिस नू देख के, पर इन्हां कोल फैक्ट्स भी ने, इन्हां कोल डेटा भी है जो इक्विफैक्स कैनेडा वालों जो डेटा जारी होया कि 8% जो क्रैडिट कार्ड एप्लीकेशन का फ्रॉड पिछले एक साल दे विच वध्या, ते जिथे वाधा इस चीज़ दे विच होया उथे असी कह सकते हाँ कि 1 लाख जे क्रैडिट कार्ड एप्लीकेशनस आईया ने, ते 1 लाख चो 1000 जो है उस स्कैमरस वालों ही ने। सो जो ये स्कैमरस ने थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नू जिथों भी इन्होंने लई हो इन्फॉर्मेशन इस नू यूज़ करके क्रैडिट कार्ड दा जो है एप्लीकेशन भर रहे ने, लोन लै रहे ने, लाइन ऑफ क्रैडिट लै रहे ने थोड़े नाते, ते कई बारी इन्हां चीज़ां दा सानू पता ही नहीं चलता लंबे समय तक। तो इस करके बहुत जरूरी है कि असी अपने जो बैंक अकाउंट्स ने जो अपनी क्रैडिट रिपोर्ट भी आती है इस नू ध्यान ना देखते रहिए, तो ये ना हो कि असी सारा ट्रस्ट जो है वह बैंक नू दे दिता कि हाँ कि बैंक जो है इस चीज़ नू वेख ही रहा होना कि साड़े नाल कुछ नहीं होंदा। पर एक केस अजिहा जो सामने आया कि एक व्यक्ति जो ऑनलाइन चलो बैंकिंग अपनी किते चैक कर लैंदा, तो फिर वह सोच ही पै जांदा कि 35,000 का लाइन ऑफ क्रैडिट जो है वह अकाउंट दे विच ऐड किहड़े वेले होया, किस तरह होया, तो वह यूज़ भी हो चुका सी। सो यह स्कॉशिया बैंक दे एक कस्टमर दे नाल ये चीज़ जो है वह वापरी है कि कोई होर बंदा उस दे नाँ ते बैंक गया, लाइन ऑफ क्रैडिट उसने खोली, तो फिर क्रैडिट कार्ड भी लै लिया, तो 35,000 जो है वह कढ़वा भी लिया।
ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੈਮਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੌਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਬੈਸਟ ਸਮਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 416-817-6500 ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਟੌਪ ਚੋਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ। 416-817-6500 416-817-6500 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਹੈਲਥ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਅੱਛੇ ਪਲਾਨਸ ਲਵੋ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 416-817-6500 416-817-6500 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੀਤ ਮਾਣ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मंग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना ब्याज निकियां निकियां किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862, G Media Group।

कोई इंतजार नहीं कर रहा था। माँ बिस्तर पर थी फिर भी मुस्कुराकर पूछने लगी, आ गया मेरा राजा बेटा? मैंने कहा माँ भूख लगी है। उन्होंने उठने की कोशिश की, मुझे खाना परोसने की कोशिश की, लेकिन बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी, दर्द की वजह से वापस लेट गई। उस दिन पहली बार मुझे पता चला किचन में प्लेट कहाँ रखी होती है। पहली बार मैंने खुद के लिए भोजन रखा। खाना ठंडा था लेकिन सच बताऊं उससे ज्यादा पूरा जो है घर ठंडा लग रहा था। रात को मैंने देखा कि माँ को बहुत तेज बुखार था, फिर भी पापा से पूछ रही थी, बेटे ने दूध पी लिया? उसने होमवर्क कर लिया क्या? उसकी मैथ्स की कॉपी जरूर रखना, ड्राइंग कॉपी जरूर रखना। उन्हें अपनी दवाई से ज्यादा, अपनी बीमारी से ज्यादा मेरी चिंता थी। अगले दिन मैंने माँ का मोबाइल उठाया, मुझे लगा कि गेम्स होंगे। माँ के मोबाइल में तो बहुत सारे फोटोज थे और सिर्फ मेरे ही फोटोज थे। मैं पहली बार स्कूल गया था तब की फोटो थी, पहली बार साइकिल चले उसकी फोटो थी, पहली बार मैंने वो सुपरमैन की ड्रेस पहनी उसकी फोटो थी। माँ के मोबाइल में उनकी पिक्चर्स अच्छी वाली थी नहीं, कोई भी अच्छी तस्वीर नहीं थी, मेरी फोटोज थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद माँ अपनी जिंदगी जीती नहीं है, वो तो हमारी जिंदगी जीती है। तीसरे दिन मैंने माँ के पैर दबाए। उन्होंने मुस्कुरा करके पूछा कि आज क्या हुआ, सूरज पश्चिम से निकल गया क्या? मैं हंस तो दिया लेकिन मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। मुझे याद आया मैंने उन्हें कितनी बार कहा था कि आपको कुछ नहीं आता, हर समय डांटती हो। लेकिन सच बताऊं तो सच ये था कि मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे पता ही नहीं था मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म कहाँ रखी होती है। मेरी स्कूल की शर्ट जो अलमीरा में अपने आप नहीं आती है, टिफिन अपने आप नहीं भरता है, लंच बॉक्स अपने आप तैयार नहीं होता है, बिस्तर अपने आप ठीक नहीं होता है, घर अपने आप साफ नहीं होता है, मेरी पसंद का खाना अपने आप नहीं बन जाता है। इन सब के पीछे मेरी माँ की नींद है, उनका समय है, उनका त्याग है, उनकी पूरी जिंदगी है। अगर भगवान मुझसे पूछें कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं कहूंगा माँ होना। क्योंकि माँ छुट्टी नहीं ले सकती, उन्हें बुखार हो तब भी घर चलता है, उन्हें दर्द हो तब भी बच्चों की चिंता है, उन्हें रोना है तब भी वो खाना मुस्कुरा करके जो है परोसती हैं। अब मैं भगवान से कभी नहीं कहूंगा कि मेरी माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाए, मैं तो यही कहूंगा कि भगवान मेरी उम्र भी मेरी माँ को दे देना। क्योंकि अगर माँ घर में होती है ना, तो छोटा सा घर भी जन्नत लगता है, छोटा सा घर भी स्वर्ग लगता है। वो निबंध जो था वो माँ पढ़ रही थी कॉपी में, वो तो वहीं समाप्त हो गया। लेकिन कॉपी पकड़ते पकड़ते उनके हाथ कांपने लगे, उनके आंसू जो है कॉपी के पन्नों पर गिरने लगे। उन्हें याद आया कि पिछले महीने तो बेटे ने गुस्से में कहा था कि आप सिर्फ डांटना जानती हो। उस दिन पूरी रात वो रोई थी, लेकिन उसी बेटे ने आज बिना उनके कहे पूरी जिंदगी पढ़ ली थी। प्रिंसिपल मैडम कहने लगी उन माँ से कि मैडम बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा त्याग पढ़ रहे होते हैं, बस उन्हें समझने में थोड़ा समय लग जाता है। माँ जब वो घर पहुंची तो उनका बेटा दौड़ के आया, गले लग गया। उसने कुछ नहीं बोला, माँ ने कुछ नहीं बोला, खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों शब्द थे। बच्चे जो है ना, कई बार उन्हें समझने में देरी हो जाती है। उस बच्चे ने तो समझ लिया, खुद अपनी प्लेट उठाना शुरू किया, खुद अपने जूते साफ करना शुरू किया, खुद अपनी यूनिफॉर्म को सजाना शुरू किया, और रात में कहने लगा माँ से कि माँ आज से मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा, लेकिन काम में आपका हाथ बटाऊंगा। माँ को ऐसा लगा जैसे उनकी सारी थकान उसी सेंटेंस में समा गई थी। बहुत छोटी सी कहानी है जो

0: पाँच से आठ तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 एंड 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: Welcome to Glitz by Gill's Banquet Hall, a beautiful space with modern design, state-of-the-art sound, state-of-the-art lighting, and wait till you see mouth-watering delicious food. Whether it's an engagement party, a wedding, a birthday party, or corporate event, Glitz by Gill's Banquet Hall has exactly what you need. Moments become a memory, memories become treasures. Call 905-724-7100, 2131 Williams Parkway, Glitz by Gill's Banquet Hall.
5: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-747-4800। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਜਨ ਟਿਊਨ ਅਪ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਿਊਨ ਅਪ, ਯੈਲੋ ਸਟਿੱਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਊ ਵੈਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ। ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ 21 ਮੈਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵ, ਨੌਰਥ ਯਾਰਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਡਾ ਹੋਰੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ 416-747-4800 416-747-6800 Premium Auto Repairs and Used Car Sales।

0: CHLO AM 530.
1: इको इकना कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल
2: 32 55 80 98 81
3: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: हाँ जी हरमन जी।
1: अरे हाले ताई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जद पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नहीं पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना किस बन।
0: मैं तो रंग दी गल करदा वी भाई चंगा साबण वरत्या करो।
1: हाँ।
0: माड़े साबण रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वालिया वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, ये कपड़िया दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेहड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां पहला मैनू ये दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेहड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा जेहड़ियां केड़ियां दा की मतलब है।
1: देखो उना ने
0: समझाओ ना पहला।
1: की समझावा
0: भाई साडे पल्ले ता पाओ।
1: की पाओ
0: केड़ियां नीतियां ने
1: उना ने जो क्या आ पहला वो गल ता सुन ला। तू
0: सुन लांगे पहला गल ता दसो नीति केड़ी है।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: हाँ जी।
1: उन्हां दी जिन्निया भी नीतियां ने
0: जी
1: उन्हां दा प्रचार पता हुण कौन करूगा?
0: कौन करू?
1: सनी देओल।
0: सनी लियोन।
1: सनी लियोन नी सनी देओल।
0: अच्छा
1: अपना वो जड़ा नलके आला
0: धर्मेंद्र भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला।
1: हां ते
0: यार वैसे मेनू पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करावणी है।
1: क्यों?
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई।
1: अच्छा
0: नलके पानी कढ देनी नाले नलके पटा लांगे नाले प्रचार करा लेंगे।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट ता फेसना हो पहला गाना सुनना ही नहीं तो मैं रो पैना जी।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी एड चला भाई, स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
0: हाँ हाँ मेनू याद आ गया,
2: शुक्र है तू कोई बदाम बदूम खाया कर,
0: की भला
2: की
0: ए होई ही भी एक ना साडी लंडी माज भी हुंदी,
2: ले लो
0: की होया,
2: मैं कंगणा दी गल कर रही हूं।
0: अखबार च पढ़िया फिल्म कैमरे वाला जेड़ा लाइटा वाले होंगे जेड़ा एको टोपी पाके काट दो काट दो वड दो वड दो
2: वड दो नी कट कहना डायरेक्टर हों
0: कट मेनू पता अंग्रेजी स्कूल कट नहीं हों कटना वडना,
2: हाँ मतलब वो उन्ना सीन उथे मतलब खत्म ओनू कहते कट, तू छो गल तू मेनू अगे गल दस,
0: ओ कहंदी भी मेनू ना बहुत वधिया लगदा ओ, हाँ कहंदी जेड़ा टेक्निकल हुंदा ना काम टेक्निकल
2: टेक्निकल हुंदा
0: टेक्निकल
2: टेक्निकल अच्छा तुहाडा टेटकी नाल हुंदा जो भी हुंदा तू मेनू गल सुना,
0: कहंदी भी ओ ना मेनू बहुत ही नजारे वाला लगदा, कहंदी बहुत नजारा आउंदा ओहदे च, पानी पीता लस्सी पीती चाह पीती दुध पीता
2: तेरा टेढ़ा टोया
0: नहीं टाइम टाइम ना बीता ही आया थोड़ा भी मतलब ऐसा थोड़ा
2: मैं के साथ कट्ठा ही करना होना और
0: नाले तो डाली चीज नहीं पीने ये उधर तू नू आदत है मैं तो कई बार गया भी कुड़ियाँ नू चंगी नहीं लगती तू ना पिया कर
2: केड़ी चीज
0: वो ही जेड़ी तू पीनी है
2: मैं केड़ी पीनी है
0: ऐसी का तो दसी है भाई
2: दस दे
0: भाई कोल्ड कॉफी पीनी है इतनी चंगी नहीं है
2: क्यों नहीं चंगी इतनी गुड होंगी है
0: सारी गुड होंगी है साडे पिंड जिन्ने ब्याह होंगे वो तत्ती करके देंगे कॉफी जे ठंडी दे देना पिछे जे मेरे ब्याह सी भूआ दे मुंडे दा उदो ठंडी कॉफी दे दी मेरे फफड़े गलों फड़ लिया कॉफी वाले नूं
2: पता की
0: कहंदा साला सवेर दियां तारां ला के ढूं ढूं कराई जांदा कॉफी मंगी हुण ठंडी दे दी
2: पता की चक्कर आ तू ठंडी नहीं पींदा उदा ही नतीजा इह आ
0: ते मैं फ्रिज रख के पी लिया कर साडी नूं भावें तू मां कॉफी दी बर्फ जमा के पा लिया कर विच सासी की लैणा देना
2: ठीक आ मैं तां तैनूं नतीजा दस्या आ
0: नतीजा तू मेरा नतीजा मेनू क्यों दसता नतीजा आपे मेरे घर दे जाके स्कूलों पूछ लैणगे जो मेरा नतीजा आउंदा हुंदा सी ना फिर दो दिन मैं नहीं घरे आउंदा हुंदा सी
2: क्यों
0: फिर छत्रां दा डर हुंदा सी ना
2: अच्छा चल मेरी गल नहीं सुननी तू
0: तेरी गल क्यों सुननु तू गड्डे दे लद्दियां
2: हुण सुनावा कि ना
0: गाउणा
2: नहीं
0: हां
2: गल्लां
0: ते गाउणा कौन सुनाऊं फिर
2: ओ गाउणा ला दिने पहला गल तां कर ला कोई मेरे नाल
0: तू गल्लां ला दे नाले गाउणा सुना दे
2: की
0: ऐ नहीं हुंदा
2: एदां नहीं हुंदा पहला मेरी गल मुकूगी तो फिर गाना लगूगा
0: ते गल मकाया तू पहला मैं बैठा थे
2: ओ नहीं
0: तेरे मकाउनी है गल
2: तेना
0: मेरे ना केड़ा जमीन वंडनी है तू
2: हाय हाय मेरे हाथ च हुण इट आ जावे ना ओही तेरे बगाती मारा सिर
0: एदा ना करी फिर मैं सिंगर बन जाऊं
2: क्यों
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਟ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਸੁੱਟ ਦੋ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਆ
2: ਆਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰੇਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਲ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ
2: ਹੈਲੋ
0: ਦੂਜਾ ਲੱਲ

देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।